डिवाइन ओ रामा रामा, डिवाइन ओ रामा रामा, ओ इनकार्नेशन ऑफ द धर्मा, आई हैव कम टू लुक फॉर यू एंड टू सरेंडर माय हार्ट. योर फुल मून फेस इल्यूमिनेट्स माय होल सोल, सो कम टू मी ओ साई राम. योर दर्शन इज माय यर्निंग, योर स्वीटनेस माय कंसोलेशन. कम टू मी ओ साई राम, डिवाइन ओ साई राम.